0: ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है फ्रांस के प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापालियो चौदवे ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
1: Priye bhaiyo evam behno, suprabhat aur su swagatam. Aaj main hal hi mein ki gayi France ki apni preritik yatra ke bare mein zikr karna chahunga. यह मेरे लिए और फ्रांस के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार था और इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं पुनः उन सबों के प्रति, नागर अधिकारियों और कलिस्य के प्रेरितों के अलावे अन्य बहुत से लोगों के प्रति जिन्होंने संत पापा से मिलने या गलियों में खड़े होते हुए उनका अभिवादन करने की चाह रखी, जो ख्रिस्त के प्रेरित और शांति के एक संदेश वाहक हैं। सबों को सारे हृदय से धन्यवाद। संत पापा लियो ने कहा कि मैं अपने इस प्रेरितिक यात्रा के विचारों और मनोभावों को संग्रहित करने की चाह रखता हूं, जो एक मात्र वृहद निशानी पेरिस के नोत्रेडम महागिरजा में केंद्रित था। वहां अपने प्रथम पड़ाव में हमने धन्य कुमारी मरियम के आदर में संध्या वंदना की। यह एक बड़ा आनंद भरा समारोह रहा, जिसमें संगीत, गायन और महागिरजाघर की सुंदरता ने हमारे हृदयों को प्रार्थना के भाव में उद्दलित किया। नोत्रेडम के महागिरजाघर को जिस त्रासदी का सामना करना पड़ा, वह इस प्रेरितिक यात्रा को एक ज्योति की निशानी स्वरूप आलोकित करती है, जिसे मैं एक शब्द में पुनर्जन्म स्वरूप परिभाषित करता हूँ। संत पापा लियो ने कहा कि पेरिस का महागिरजाघर, जो 7 साल पूर्व बुरी तरह एक विध्वंसकारी आग से क्षतिग्रस्त हुआ, अब पुनः स्थापित किया गया है, जो पहले की अपेक्षा और भी शानदार है। इस त्रासदी ने हर स्तर में एक सकारात्मक प्रक्रिया की चिंगारी उत्पन्न की है, जिसमें कुछ दृश्यमान और प्रायोगिक हैं, तो वहीं दूसरे को हम आध्यात्मिक प्रकृति में गुप्त पाते हैं। इसकी पुनर्स्थापना कलिसिय, राज्य, नागर और सामाजिक संस्थानों के बीच में एक परीक्षा स्वरूप रही। इस परिस्थिति ने हितैषियों की उदारता, व्यावसायिक रूप में विख्यात तथा कला में प्राखर कार्यकर्ताओं के बीच भरपूर सहयोग को संभव बनाया। संस्थानों, राजनीति और सामाजिक ताकतों तथा नागरिक और आर्थिक जिम्मेदारियां निभाने वाले सभी लोगों के लिए आम भलाई हेतु मिलकर काम करना एक सामान्य बात होनी चाहिए। यही वह संदेश है जिसे मैं फ्रांस के अधिकारियों और यूनेस्को के सदस्यों, शिक्षण हेतु राष्ट्र संघों, विज्ञान और सांस्कृतिक अधिकारियों को देना चाहूँगा, जिनके मुख्यालय पेरिस में अवस्थित हैं। अपने सहयोग का मूलभूत आधार मानवीय जीवन का सम्मान होना चाहिए, संत पापा ने कहा। लेकिन उससे भी बढ़कर नोत्रेडम का महागिरजाघर कलिसे की निशानी है, जो सजीव पत्थरों, पवित्र ईश प्रजा से निर्मित है। उन्होंने कहा कि महागिरजाघर में आयोजित संध्या वंदना की प्रार्थना और उसी शाम पेरिस के विशाल खेल मैदान में युवाओं के लिए आयोजित जागरण प्रार्थना के बीच समानता देखना अपने में दिलचस्प रहा। दो अलग अलग जगहें, फिर भी समकालीन घटनाएं जो आध्यात्मिकता के तार से जुड़ी थी, उन्हें क्या जोड़ता है? यह महागिरजाघर नहीं जो पत्थरों या सीमेंट से बना है, बल्कि लोगों का समूह जो यीशु ख्रीस्त को प्रेम करते हैं, क्योंकि वे उनके द्वारा प्रेम किए जाते हैं। नोत्रेडम में पुरोहितों और उप याजकगण समर्पित जीवन और प्रेरितिक कार्य में संलग्न लोग थे। वहीं स्टेडियम में फ्रांस की नई पीढ़ी उपस्थित थी। संत पापा ने कहा, केवल उम्र की दृष्टिकोण से नए नहीं, बल्कि

0: उससे भी बढ़कर वे अपने उत्साह में, अपने हृदय की स्वतंत्रता और विश्वास में नए थे। युवाओं ने गाया और नारे लगाए, लेकिन वे शांत भी रहे और ध्यान से सुना। उनके चेहरों में ध्यान और अनुभूति थी, जो युवाओं के हृदय में व्याप्त सच्चाई और प्रेम की चाह को व्यक्त करती थी। मैंने उन्हें अपने आनंद भरे संदेश में कहा,
1: Voi siete i santi di Francia.
0: आप फ्रांस के संत गण हैं। जागरण प्रार्थना आशा की एक महान निशानी थी। यही बात बखिता निवास मिलन के संबंध में सच साबित हुई, जहां हम छोटेपन में ईश्वर के कार्य को देखते हैं, जहां बहुत से जरूरतमंद लोग निवास करते हैं, एक ऐसा निवास स्थल जहां हम सुसमाचार के फलों को पाते हैं, जहां लोग प्रेम में मानव जीवन के सम्मान हेतु निष्ठा में अपने हर दिन के उत्तरदायित्वों को करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि यहां हम कलीसिया के अंदर एक नवीनता की निशानी को पाते हैं, जो कुछ सालों से प्रत्यक्ष रूप में देखी जा सकती है, मुख्य रूप से युवाओं और वयस्क लोगों के रूप में जो बपतिस्मा की चाह रखते हैं। ईश्वर से इस सुंदर आश्चर्य के उत्तर में फ्रांस में एक प्रांतीय धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे संबोधित करते हुए मैंने नव दीक्षार्थियों और बपतिस्मा प्राप्त लोगों को अपने समुदाय के संग, जहां वे निवास करते हैं, विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। संत पापा ने कहा कि मेरी प्रेरितिक यात्रा का चरम बिंदु पलास दे ला कॉनकॉर्ड था। वहां हमने पुनर्जन्म को एक आश्चर्यजनक निशानी के रूप में अभिव्यक्त पाया। धर्मविधि की सभा, जिसमें विशाल चौराहे पर पुरोहितों, गायक मंडली और लोगों की भीड़ जमा हुई थी, यह एवेन्यू देस चैंपस एलिसीज से होते हुए आर्क डी ट्रायम्फ और उससे भी आगे तक फैली हुई थी। मिस्सा बलिदान के दौरान परम प्रसाद के समय हर किसी को परम प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिला, जिसे हर जगह बांटा गया। यही कलीसिया का सच्चे पुनरुत्थान उसके पुनर्निर्माण को व्यक्त करता है, जिसे केवल ईश्वर ही कुमारी मरियम की मध्यस्थता से संभव बना सकते हैं। इस भांति यह स्वाभाविक और उचित था कि पेरिस के बाद मैं लूर्द की तीर्थ यात्रा करूं और कलीसिया की माता मरियम को अपनी श्रद्धा सुमन प्रकट करूं, जो दुख और मृत्यु की घड़ी में भी विश्वास और आशा की ज्योति को जलाए रखती हैं। संत पापा ने कहा, लूर्द में ईश्वर ने कुमारी मरियम की ममतामयी देखभाल के जरिए सभी लोगों तक, विशेषकर तीर्थ यात्रियों और उन लोगों तक जो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हैं, आशा और नए जीवन के संदेश को पहुंचाते हैं। यह एक ऐसा संदेश है जिसे मैंने खुले रूप में दोहराना चाहा। हर मानव की जिंदगी, चाहे वह किसी भी हालत में हो, यहाँ तक कि बेहद संवेदनशील स्थिति में भी, अपनी अटूट गरिमा बनाए रखती है। अतः हमें चाहिए कि हम मानवीय संवेदना और विज्ञान की मदद से उसकी देखभाल करें, उसका साथ दें और उसके दुख को कम करने में जरूरी कदम लें। यही कारण है कि लूर्द दुनिया के लिए प्रेम की सभ्यता का एक पवित्र स्थल है। इस संदर्भ में मैंने कुछ लोगों से भेंट की जो दुर्व्यवहार के शिकार हुए थे। मैंने उनसे कहा कि वे दूसरे पीड़ितों तक मेरी और पूरी कलीसिया की इस बात को पहुंचाएं कि हम उनकी बातें सुनना चाहते और उनके साथ चलते हैं, ताकि उन्हें चंगाई प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि हम उनके जीवन पर हुए जुल्म को समझते हैं और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। संत पापा लियो ने अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव मिट्स के शहर, जो फ्रांस और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण प्रभावित हुआ, जिक्र करते हुए कहा कि यहीं पर रॉबर्ट शूमन ने अपना काम किया, जो यूरोप को एकजुट करने की प्रक्रिया के मुख्य प्रेरणा स्रोतों में से एक थे। असल में युद्ध से हुई तबाही के बाद शांति की एक परियोजना स्वरूप आधुनिक यूरोप का जन्म हुआ। हम कह सकते हैं कि पेरिस के नोट्रेडेम में आग लगने से जो हुआ, वही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के साथ हुआ। इस तरह यूरोप का पुनर्जन्म हुआ, जो लोकतंत्र, एकजुटता और लोगों के बीच भाईचारे के उन सिद्धांतों पर आधारित था, जिनका श्रेय काफी हद तक ख्रिस्तीयता की जड़ों को जाता है। आज भी इन्हीं बुनियादों और इसी अहम जीवन शक्ति के साथ यूरोप के इस परियोजना को एक ऐसी दुनिया में नया रूप दिया जा सकता है जो अत्यधिक वैश्विक हो गई है, जहां अलग अलग धर्मों के बीच वार्ता अहम भूमिका निभाती है। इस वजह से मिड्स में मैं अलग अलग धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों से भेंट की, जिन्होंने मेरी उपस्थिति में वार्ता और शांति के लिए मिड्स अपील का अध्ययन करते हुए उस पर हस्ताक्षर किए। प्रिय मित्रों, संत पापा लियो ने कहा कि फ्रांस की मेरी प्रेरितिक यात्रा का विषय वस्तु था जिससे दुनिया को जीवन मिले। ये यीशु के शब्द हैं जो उनके मुक्तिदायी पूरे प्रेरितिक कार्य को संक्षेपित करते हैं, जो इस प्रेरितिक यात्रा के दौरान हर मुलाकात में सुसमाचार के अर्थ को पूर्ण रूपेण व्यक्त किया। यह हमारी प्रार्थना को प्रेरित करे, जैसे कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस घटना की कृपा हमारे लिए बहुतायत और निरंतर बने रहने वाला फल उत्पन्न करे। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के समापन पर टीग्रे क्षेत्र के सभी पक्षों से लड़ाई झगड़े रोकने की अपील की। संत पापा लियो इथियोपिया के टीग्रे इलाके और उसके पड़ोसी इलाकों अफार और अम्मारा के हालात पर गहरी चिंता के साथ नजर रख रहे हैं, जहां एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है। संत पापा ने कहा, मैं सभी पक्षों से दिल से अपील करता हूं कि वे बातचीत का रास्ता चुनें। हथियारों से होने वाली लड़ाई कभी समस्याओं का हल नहीं करती, बल्कि उन्हें और बढ़ा देती हैं। इसके बाद सिर्फ मौत, तबाही और नाराजगी ही रह जाती है। सिर्फ ईमानदारी से की गई बातचीत ही स्थायी शांति की नींव रख सकती है। और संत पापा को उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दिल खोलकर और सही समय पर मदद करेंगे, ताकि जरूरतमंद तक हर तरह की मानवीय सहायता पहुंच सके। इसके बाद संत पापा ने रविवार 27 सितंबर को बोलोनिया में 3 शहीद पुरोहितों, धर्म प्रांतीय पुरोहित उबाल्डो, सलेशियन पुरोहित एलिया कोमिनी और डेहोनियन पुरोहित मार्टिनो कैपेली के धन्य घोषणा के बारे में बातें की। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के एक बहुत मुश्किल दौर में नाजी सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वे अपने धर्म समुदाय के लोगों की सेवा कर रहे थे और नाजी सैनिक इस काम को पसंद नहीं करते थे। ईश्वर के इन सेवकों का सर्वोच्च बलिदान आज के ख्रिस्तियों को अपने भाइयों और बहनों के करीब आने का साहस देता है, खासकर मुश्किल समय में। पोलैंड के विश्वासियों को संबोधित करते हुए संत पापा ने याद दिलाया कि 30 साल पहले 6 अक्टूबर 1996 को संत जॉन पॉल द्वितीय ने विंचेंसियो लेवोन्यूक और उनके 12 साथियों को धन्य घोषित किया था। ये वे शहीद थे जिन्होंने प्राटुलिन में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने अपनी पूर्वी परंपरा के प्रति निष्ठावान रहते हुए कैथोलिक कलीसिया से अपने जुड़ाव और पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ अपनी एकता की रक्षा की। संत पापा ने उनकी मध्यस्थता में मसीह के शिष्यों की एकता और उन कैथोलिकों के हित को सौंपा जिन्हें आज उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा है। उधर डोमिनिकन मठवासी धर्म बहनों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने आज समर्पित जीवन के सामने आने वाले मुश्किलों पर जोर दिया, जिनमें बुलावे का संकट और साझा प्रशिक्षण जैसे चुनौतियां शामिल हैं। बुजुर्ग होते समुदायों, घटती संख्या और काम करने वालों की कमी जैसी मुश्किलों के बीच एक धधकती आग सी स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे आर्थिक और संपत्ति प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। इसमें आपसी तालमेल, अलग अलग संस्कृतियों के मेलजोल और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले ढांचे बनाने जैसी चुनौतियां भी शामिल हैं। इन सब का सामना कैसे किया जाए? सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की सोच के लालच में न पड़कर, बल्कि शांति और खामोशी बनाए रखते हुए ईश्वर की आवाज और उसके बुलावे को सुनते रहना चाहिए। ये वो दिशा निर्देश हैं जिसे संत पापा लियो ने वाटिकन के परमाध्यक्षों के भवन में डोमिनिकन मठवासी धर्म बहनों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग से मुलाकात कर बताया। प्रचारकों के धर्म समाज की ईश सेविका सिस्टर मरिया पेट्रा जोर्दानो के असाधारण गुणों को मान्यता मिलने के कुछ ही समय बाद संत पापा ने इस प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। दरअसल संत डोमिनिक के ठीक बाद उनके उत्तराधिकारी बने ससोनिया के जोर्दानो की लिखी बातों से पता चलता है कि शुरुआत से ही इन शुरुआती महिला समुदायों की धर्म बहन मुख्य रूप से चिंतन मनन वाली प्रार्थना और अध्ययन में लगी रहती थी। तपस्या का पालन करते हुए वे धर्म प्रचारकों के प्रचार कार्य में उनका साथ देती थीं और उसी आध्यात्मिक मिशन कार्यक्रम में भागीदार बनती थी। संत पापा ने धर्म बहनों से कहा कि वे यह पक्का करें कि उनकी सभाएं हमेशा सबसे पहले प्रभु के साथ मिलन के पल हों, प्रार्थना में, एक दूसरे की बात सुनने में, भाईचारे के साथ सुधार करने में और मेल मिलाप में। उन्होंने एकांत जीवन के एक जरूरी गुण के तौर पर खामोशी पर खास जोर दिया।
इसके बाद संत पापा ने कहा कि शांति का महत्व तेज रफ्तार वाली दुनिया में बहुत ज्यादा है। संत पापा ने उनसे कहा कि वे सुने कि आज आत्मा डोमिनिकन चिंतनशील जीवन से क्या कहना चाहती है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले एक बुलावा होता है जिसका हमें जवाब देना होता है। एक ऐसी आग जो जलती है और जिसे बुझने नहीं देना चाहिए, जैसा कि सियेना की संत कैथरीन ने कहा था। संत पापा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, कलीसिया के लिए आपकी सेवा बहुत कीमती है। इसे भरोसे, आपसी मेलजोल और समझदारी के साथ जारी रखें। एकजुट रहें, लेकिन एक जैसे न बनें। परंपरा के प्रति वफादार रहें और नई चीजों के लिए तैयार रहें। चिंतनशील बने, क्योंकि आप दुनिया को ईश्वर के सामने लाने में सक्षम हैं। उधर संत गैब्रियल महादूत के पर्व दिवस पर वाटिकन के संचार विभाग ने 61वें विश्व संचार दिवस के लिए विषय जारी किया, एक नई नज़र, क्लिकबेट के दौरे पर ध्यान देना। इस साल का विषय ख्रिस्तियों को अपनी नज़र बदलने के लिए प्रेरित करता है, फिर से देखना, ध्यान और प्यार के साथ। इसमें कहा गया है कि विषय वस्तु के तेज और कभी न खत्म होने वाले बहाव के बीच कुछ पल का ध्यान खींचने की होड़ वाली अटेंशन इकोनॉमी न केवल हमारी सोचने समझने की क्षमताओं को बदल रही है, बल्कि हमारे आपसी बातचीत की गहराई को भी प्रभावित कर रही है। जब हमारी नज़र दूसरों को परखने या जज करने के बजाय उनमें जुड़ने का फैसला करती है, तो हमारा संवाद बदल जाता है। इसमें कहा गया है कि लोगों पर हर दिन हर पल तुरंत प्रतिक्रिया देने और सतही रिश्ते बनाए रखने की उम्मीदों का बोझ रहता है, जिसके कारण डिजिटल संस्कृति की वजह से सच्चे ध्यान की कमी हो जाती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है फ्रांस के प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापालियो चौदवे ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। आज मैं हाल ही में की गई फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। यह मेरे लिए और फ्रांस के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार था और इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं पुनः उन सबों के प्रति, नागर अधिकारियों और कलीसिया के प्रेरितों के अलावे अन्य बहुत से लोगों के प्रति जिन्होंने संत पापा से मिलने या गलियों में खड़े होते हुए उनका अभिवादन करने की चाह रखी, जो ख्रिस्त के प्रेरित और शांति के एक संदेश वाहक हैं। सबों को सारे हृदय से धन्यवाद। संत पापा लियो ने कहा कि मैं अपने इस प्रेरितिक यात्रा के विचारों और मनोभावों को संग्रहित करने की चाह रखता हूँ, जो एक मात्र वृहद निशानी पेरिस के नोत्रेडम महागिरजा में केंद्रित था। वहाँ अपने प्रथम पड़ाव में हमने धन्य कुमारी मरियम के आदर में संध्या वंदना की। यह एक बड़ा आनंद भरा समारोह रहा, जिसमें संगीत, गायन और महागिरजा घर की सुंदरता ने हमारे हृदयों को प्रार्थना के भाव में उद्दलित किया। नोत्रेडम के महागिरजा घर को जिस त्रासदी का सामना करना पड़ा, वह इस प्रेरितिक यात्रा को एक ज्योति की निशानी स्वरूप आलोकित करती है, जिसे मैं एक शब्द में पुनर्जन्म स्वरूप परिभाषित करता हूँ। संत पापा लियो ने कहा कि पेरिस का महागिरजा घर, जो 7 साल पूर्व बुरी तरह एक विध्वंसकारी आग से क्षतिग्रस्त हुआ, अब पुनः स्थापित किया गया है, जो पहले की अपेक्षा और भी शानदार है। इस त्रासदी ने हर स्तर में एक सकारात्मक प्रक्रिया की चिंगारी उत्पन्न की है, जिसमें कुछ दृश्यमान और प्रायोगिक हैं, तो वहीं दूसरे को हम आध्यात्मिक प्रकृति में गुप्त पाते हैं। इसकी पुनर्स्थापना कलीसिया, राज्य, नागर और सामाजिक संस्थानों के बीच में एक परीक्षा स्वरूप रही। इस परिस्थिति ने हितैषियों की उदारता, व्यावसायिक रूप में विख्यात तथा कला में प्राखर कार्यकर्ताओं के बीच भरपूर सहयोग को संभव बनाया। संस्थानों, राजनीति और सामाजिक ताकतों तथा नागरिक और आर्थिक जिम्मेदारियां निभाने वाले सभी लोगों के लिए आम भलाई हेतु मिलकर काम करना एक सामान्य बात होनी चाहिए। यही वह संदेश है जिसे मैं फ्रांस के अधिकारियों और यूनेस्को के सदस्यों, शिक्षण हेतु राष्ट्र संघों, विज्ञान और सांस्कृतिक अधिकारियों को देना चाहूँगा, जिनके मुख्यालय पेरिस में अवस्थित हैं। अपने सहयोग का मूलभूत आधार मानवीय जीवन का सम्मान होना चाहिए, संत पापा ने कहा। लेकिन उससे भी बढ़कर नोत्रेडम का महागिरजा घर कलीसिया की निशानी है, जो सजीव पत्थरों, पवित्र ईश प्रजा से निर्मित है। उन्होंने कहा कि महागिरजा घर में आयोजित संध्या वंदना की प्रार्थना और उसी शाम पेरिस के विशाल खेल मैदान में युवाओं के लिए आयोजित जागरण प्रार्थना के बीच समानता देखना अपने में दिलचस्प रहा। दो अलग अलग जगहें, फिर भी समकालीन घटनाएं जो आध्यात्मिकता के तार से जुड़ी थी, उन्हें क्या जोड़ता है? यह महागिरजाघर नहीं जो पत्थरों या सीमेंट से बना है, बल्कि लोगों का समूह जो यीशु ख्रीस्त को प्रेम करते हैं, क्योंकि वे उनके द्वारा प्रेम किए जाते हैं। नोत्रदेम में पुरोहितों और उप याजकगण समर्पित जीवन और प्रेरित कार्य में संलग्न लोग थे। वहीं स्टेडियम में फ्रांस की नई पीढ़ी उपस्थित थी। संत पापा ने कहा, केवल उम्र की दृष्टिकोण से नए नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर वे अपने उत्साह में, अपने हृदय की स्वतंत्रता और विश्वास में नए थे। युवाओं ने गाया और नारे लगाए, लेकिन वे शांत भी रहे और ध्यान से सुना। उनके चेहरों में ध्यान और अनुभूति थी, जो युवाओं के हृदय में व्याप्त सच्चाई और प्रेम की चाह को व्यक्त करती थी। मैंने उन्हें अपने आनंद भरे संदेश में कहा,
2: Voi siete i santi di Francia.
1: आप फ्रांस के संत गण हैं। जागरण प्रार्थना आशा की एक महान निशानी थी। यही बात बखिता निवास मिलन के संबंध में सच साबित हुई, जहां हम छोटेपन में ईश्वर के कार्य को देखते हैं, जहां बहुत से जरूरतमंद लोग निवास करते हैं, एक ऐसा निवास स्थल जहां हम सुसमाचार के फलों को पाते हैं, जहां लोग प्रेम में मानव जीवन के सम्मान हेतु निष्ठा में अपने हर दिन के उत्तरदायित्वों को करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि यहां हम कलीसिया के अंदर एक नवीनता की निशानी को पाते हैं, जो कुछ सालों से प्रत्यक्ष रूप में देखी जा सकती है, मुख्य रूप से युवाओं और वयस्क लोगों के रूप में जो बपतिस्मा की चाह रखते हैं। ईश्वर से इस सुंदर आश्चर्य के उत्तर में फ्रांस में एक प्रांतीय धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे संबोधित करते हुए मैंने नव दीक्षार्थियों और बपतिस्मा प्राप्त लोगों को अपने समुदाय के संग, जहां वे निवास करते हैं, विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। संत पापा ने कहा कि मेरी प्रेरितिक यात्रा का चरम बिंदु पलास दे ला कॉनकॉर्डे था। वहां हमने पुनर्जन्म को एक आश्चर्यजनक निशानी के रूप में अभिव्यक्त पाया। धर्म विधि की सभा, जिसमें विशाल चौराहे पर पुरोहितों, गायक मंडली और लोगों की भीड़ जमा हुई थी, यह एवेन्यू दस चैंपस एलिसीज से होते हुए आर्क डी ट्रायम्फ और उससे भी आगे तक फैली हुई थी। मिस्सा बलिदान के दौरान परम प्रसाद के समय हर किसी को परम प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिला, जिसे हर जगह बांटा गया। यही कलीसिया का सच्चे पुनरुत्थान उसके पुनर्निर्माण को व्यक्त करता है, जिसे केवल ईश्वर ही कुमारी मरियम की मध्यस्थता से संभव बना सकते हैं। इस भांति यह स्वाभाविक और उचित था कि पेरिस के बाद मैं लूर्द की तीर्थ यात्रा करूं और कलीसिया की माता मरियम को अपनी श्रद्धा सुमन प्रकट करूं, जो दुख और मृत्यु की घड़ी में भी विश्वास और आशा की ज्योति को जलाए रखती हैं। संत पापा ने कहा, लूर्द में ईश्वर ने कुमारी मरियम की ममतामयी देखभाल के जरिए सभी लोगों तक, विशेषकर तीर्थयात्रियों और उन लोगों तक जो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हैं, आशा और नए जीवन के संदेश को पहुंचाते हैं। यह एक ऐसा संदेश है जिसे मैंने खुले रूप में दोहराना चाहा। हर मानव की जिंदगी, चाहे वह किसी भी हालत में हो, यहाँ तक कि बेहद संवेदनशील स्थिति में भी, अपनी अटूट गरिमा बनाए रखती है। अतः हमें चाहिए कि हम मानवीय संवेदना और विज्ञान की मदद से उसकी देखभाल करें, उसका साथ दें और उसके दुख को कम करने में जरूरी कदम लें। यही कारण है कि लूर्द दुनिया के लिए प्रेम की सभ्यता का एक पवित्र स्थल है। इस संदर्भ में मैंने कुछ लोगों से भेंट की जो दुर्व्यवहार के शिकार हुए थे। मैंने उनसे कहा कि वे दूसरे पीड़ितों तक मेरी और पूरी कलीसिया की इस बात को पहुंचाएं कि हम उनकी बातें सुनना चाहते और उनके साथ चलते हैं, ताकि उन्हें चंगाई प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि हम उनके जीवन पर हुए जुल्म को समझते हैं और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। संत पापा लियो ने अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव मेट्स के शहर, जो फ्रांस और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण प्रभावित हुआ, जिक्र करते हुए कहा कि यहीं पर रॉबर्ट शूमन ने अपना काम किया, जो यूरोप को एकजुट करने की प्रक्रिया के मुख्य प्रेरणा स्रोतों में से एक थे। असल में युद्ध से हुई तबाही के बाद शांति की एक परियोजना स्वरूप आधुनिक यूरोप का जन्म हुआ। हम कह सकते हैं कि पेरिस के नोट्रेडेम में आग लगने से जो हुआ वही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के साथ हुआ। इस तरह यूरोप का पुनर्जन्म हुआ जो लोकतंत्र, एकजुटता और लोगों के बीच भाईचारे के उन सिद्धांतों पर आधारित था जिनका श्रेय काफी हद तक ख्रिस्तीयता की जड़ों को जाता है। आज भी इन्हीं बुनियादों और इसी अहम जीवन शक्ति के साथ यूरोप के इस परियोजना को एक ऐसी दुनिया में नया रूप दिया जा सकता है जो अत्यधिक वैश्विक हो गई है, जहां अलग अलग धर्मों के बीच वार्ता अहम भूमिका निभाती है। इस वजह से मिड्स में मैं अलग अलग धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों से भेंट की जिन्होंने मेरी उपस्थिति में वार्ता और शांति के लिए मिड्स अपील का अध्ययन करते हुए उस पर हस्ताक्षर किए। प्रिय मित्रों, संत पापा लियो ने कहा कि फ्रांस की मेरी प्रेरितिक यात्रा का विषय वस्तु था जिससे दुनिया को जीवन मिले। ये यीशु के शब्द हैं जो उनके मुक्तिदायी पूरे प्रेरितिक कार्य को संक्षेपित करते हैं, जो इस प्रेरितिक यात्रा के दौरान हर मुलाकात में सुसमाचार के अर्थ को पूर्ण रूपेण व्यक्त किया। यह हमारी प्रार्थना को प्रेरित करे जैसे कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस घटना की कृपा हमारे लिए बहुतायत और निरंतर बने रहने वाला फल उत्पन्न करे। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के समापन पर टीग्रे क्षेत्र के सभी पक्षों से लड़ाई झगड़े रोकने की अपील की। संत पापा लियो इथियोपिया के टीग्रे इलाके और उसके पड़ोसी इलाकों अफार और अम्मारा के हालात पर गहरी चिंता के साथ नजर रख रहे हैं, जहां एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है। संत पापा ने कहा, मैं सभी पक्षों से दिल से अपील करता हूं कि वे बातचीत का रास्ता चुनें। हथियारों से होने वाली लड़ाई कभी समस्याओं का हल नहीं करती, बल्कि उन्हें और बढ़ा देती हैं। इसके बाद सिर्फ मौत, तबाही और नाराजगी ही रह जाती है। सिर्फ ईमानदारी से की गई बातचीत ही स्थायी शांति की नींव रख सकती है। और संत पापा को उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दिल खोलकर और सही समय पर मदद करेंगे, ताकि जरूरतमंद तक हर तरह की मानवीय सहायता पहुंच सके। इसके बाद संत पापा ने रविवार 27 सितंबर को बोलोनिया में 3 शहीद पुरोहितों, धर्म प्रांतीय पुरोहित उबाल्डो, सलेशियन पुरोहित एलिया कोमिनी और डेहोनियन पुरोहित मार्टिनो कैपेली के धन्य घोषणा के बारे में बातें की। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के एक बहुत मुश्किल दौर में नाजी सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वे

साथियों को धन्य घोषित किया था। ये वे शहीद थे जिन्होंने प्राटुलिन में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने अपनी पूर्वी परंपरा के प्रति निष्ठावान रहते हुए कैथोलिक कलीसिया से अपने जुड़ाव और पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ अपनी एकता की रक्षा की। संत पापा ने उनकी मध्यस्थता में मसीह के शिष्यों की एकता और उन कैथोलिकों के हित को सौंपा जिन्हें आज उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा है। उधर डोमिनिकन मठवासी धर्म बहनों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने आज समर्पित जीवन के सामने आने वाले मुश्किलों पर जोर दिया, जिनमें बुलावे का संकट और साझा प्रशिक्षण जैसी चुनौतियां शामिल हैं। बुजुर्ग होते समुदायों, घटती संख्या और काम करने वालों की कमी जैसी मुश्किलों के बीच एक धधकती आग सी स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे आर्थिक और संपत्ति प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। इसमें आपसी तालमेल, अलग अलग संस्कृतियों के मेलजोल और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले ढांचे बनाने जैसी चुनौतियां भी शामिल हैं। इन सब का सामना कैसे किया जाए? सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की सोच के लालच में न पड़कर, बल्कि शांति और खामोशी बनाए रखते हुए ईश्वर की आवाज और उसके बुलावे को सुनते रहना चाहिए। ये वो दिशा निर्देश हैं जिसे संत पापा लियो ने वाटिकन के परमाध्यक्षों के भवन में डोमिनिकन मठवासी धर्म बहनों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग से मुलाकात कर बताया। प्रचारकों के धर्म समाज की ईश सेविका सिस्टर मरिया पेट्रा जोर्दानो के असाधारण गुणों को मान्यता मिलने के कुछ ही समय बाद संत पापा ने इस प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। दरअसल संत डोमिनिक के ठीक बाद उनके उत्तराधिकारी बने ससोनिया के जोर्दानो की लिखी बातों से पता चलता है कि शुरुआत से ही इन शुरुआती महिला समुदायों की धर्म बहन मुख्य रूप से चिंतन मनन वाली प्रार्थना और अध्ययन में लगी रहती थी। तपस्या का पालन करते हुए वे धर्म प्रचारकों के प्रचार कार्य में उनका साथ देती थीं और उसी आध्यात्मिक मिशन कार्यक्रम में भागीदार बनती थी। संत पापा ने धर्म बहनों से कहा कि वे यह पक्का करें कि उनकी सभाएं हमेशा सबसे पहले प्रभु के साथ मिलन के पल हों, प्रार्थना में, एक दूसरे की बात सुनने में, भाईचारे के साथ सुधार करने में और मेल मिलाप में। उन्होंने एकांत जीवन के एक जरूरी गुण के तौर पर खामोशी पर खास जोर दिया। इसके बाद संत पापा ने कहा कि शांति का महत्व तेज रफ्तार वाली दुनिया में बहुत ज्यादा है। संत पापा ने उनसे कहा कि वे सुने कि आज आत्मा डोमिनिकन चिंतनशील जीवन से क्या कहना चाहती है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले एक बुलावा होता है जिसका हमें जवाब देना होता है, एक ऐसी आग जो जलती है और जिसे बुझने नहीं देना चाहिए, जैसा कि सियेना की संत कैथरीन ने कहा था। संत पापा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, कलीसिया के लिए आपकी सेवा बहुत कीमती है, इसे भरोसे, आपसी मेलजोल और समझदारी के साथ जारी रखें, एकजुट रहें, लेकिन एक जैसे न बने, परंपरा के प्रति वफादार रहें और नई चीजों के लिए तैयार रहें, चिंतनशील बने, क्योंकि आप दुनिया को ईश्वर के सामने लाने में सक्षम हैं। उधर संत गैब्रियल महादूत के पर्व दिवस पर वाटिकन के संचार विभाग ने 61वें विश्व संचार दिवस के लिए विषय जारी किया, एक नई नज़र, क्लिकबेट के दौरे पर ध्यान देना। इस साल का विषय ख्रिस्तियों को अपनी नज़र बदलने के लिए प्रेरित करता है, फिर से देखना, ध्यान और प्यार के साथ। इसमें कहा गया है कि विषय वस्तु के तेज और कभी न खत्म होने वाले बहाव के बीच कुछ पल का ध्यान खींचने की होड़ वाली अटेंशन इकोनॉमी न केवल हमारी सोचने समझने की क्षमताओं को बदल रही है, बल्कि हमारे आपसी बातचीत की गहराई को भी प्रभावित कर रही है। जब हमारी नज़र दूसरों को परखने या जज करने के बजाय उनमें जुड़ने का फैसला करती है, तो हमारा संवाद बदल जाता है। इसमें कहा गया है कि लोगों पर हर दिन, हर पल तुरंत प्रतिक्रिया देने और सतही रिश्ते बनाए रखने की उम्मीदों का बोझ रहता है, जिसके कारण डिजिटल संस्कृति की वजह से सच्चे ध्यान की कमी हो जाती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया,

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

ज्योति मधुर लगती है और आंखें सूर्य का प्रकाश देखकर प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य वर्षों तक जीता रहता है तो उन सब का आनंद मनाए, किंतु उसे याद रहे कि बुरे दिनों का अभाव नहीं और बाद में जो आएगा वह सब व्यर्थ है। युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट को दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय के अंतिम पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। उपदेशक सुलेमान इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि सूर्य का प्रकाश हम प्रतिदिन देखते हैं, किंतु उसके महत्व के प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता। जीवन एक वरदान है, उसी तरह सूर्य का प्रकाश भी ईश प्रदत्त अनमोल वरदान है। सूर्य की ज्योति मधुर होती है, वह हमारे जीवन को रोशन करती है। सूर्य की रोशनी से चित्त प्रसन्न होता और अंधकार समाप्त हो जाता है। उपदेशक का परामर्श है कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र लंबी है, यदि वह दीर्घ काल तक जीता है, तो वह अपने जीवन के सभी वर्षों का आनंद उठाए, किंतु यह कदापि न भूले कि अच्छे दिनों के बाद बुरे दिनों का भी अभाव नहीं होगा। वस्तुतः उपदेशक का कहना है कि जीवन एक अनमोल वरदान है जिसका आनंद लिया जाना चाहिए, साथ ही भविष्य में आने वाली कठिनाइयों और समय के क्षण भंगुरता की सच्चाई को भी याद रखा जाना चाहिए। श्रोताओं, उक्त पद जीवन की सरलता और उसके प्रतिदिन के वरदान होने का समारोह है। ये लोगों को कठिन घड़ियों में, यानी कि बीमारी आने से पहले और वृद्धावस्था के आने से पहले, जीवन के समय की कद्र करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। सूर्य और उसका प्रकाश जीवन का प्रतीक और मनुष्य को दिया गया अनमोल वरदान है। मनुष्य को हर दिन के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। फिर उक्त पद हमसे अपने समय की कीमत समझने और रोजमर्रा के पलों में खुशी ढूंढने का आग्रह करते हैं, साथ ही इसमें सच्चाई के साथ संतुलन रखने का अनुरोध किया गया है। उपदेशक का परामर्श है कि अपने अच्छे दिनों में कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे बुरे दिनों में भी तुम्हारा धैर्य न टूटे और साहसपूर्वक तुम सारी कठिनाइयों का सामना कर सको। तदुपरांत उपदेशक युवाओं को सावधान करता है कि वे अपनी जवानी का मजा अवश्य लें, स्वतंत्रता से जिएं, किंतु इस बात को कदापि न भूलें कि उन्हें अपने किए प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा। यह कदापि न भूलें कि ईश्वर उन्हें उनके निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। प्रिय युवाओं, जवानी और जोश जल्दी ही बीत जाता है, इसलिए यौवन के वर्षों को हम कड़वाहट, नाराजगी और बेमतलब के बोझ पर बर्बाद न करें, बल्कि इन अच्छे वर्षों का सदुपयोग करें। इन वर्षों में आजादी और आनंद के बीच कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को न भुलाएं, नियमों का अनुपालन करें, व्यवस्था कायम करने में योगदान दें तथा अपने और अपने आस पड़ोस के लोगों का जीवन सुखमय बनाएं।

और उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय के अंतिम पद में उपदेशक कहता है, अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट को दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। श्रोताओ, अनंत ज्योति और अनंत ईश्वर की ज्योति में जीने से हमारे जीवन में न सिर्फ भावी जीवन के लिए अपितु वर्तमान जीवन में भी आशा का संचार होता है, जो हमारे हृदय से शोक, दुख और संताप को दूर कर देती है। कुरिन्थियों को प्रेषित पहले पत्र के 15वें अध्याय के 58वें पद में संत पॉल लिखते हैं, प्यारे भाइयों, आप सुदृढ़ और अटल बने रहें और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। श्रोताओ, अनंत जीवन और अनंत और अनादि ईश्वर का स्मरण किए बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है, बेमतलब है, और प्रेरित वर संत पॉल इस बात को भलीभांति समझ चुके थे। इसीलिए तो कुरिन्थियों को प्रेषित पहले पत्र के 15वें अध्याय के 19वें पद में वे लिखते हैं, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। आगे उपदेशक ग्रंथ के 12वें अध्याय में भी सुलेमान इसी विचार को जारी रखते हुए युवकों का आह्वान करता है कि जवानी में वे अवश्य आनंद मनाएं, किंतु सृष्टिकर्ता ईश्वर को न भूलें। 12वें अध्याय के प्रथम 3 पदों में वह कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे, मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला, उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे, उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे और जो खिड़कियों से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। श्रोताओ, 12वां अध्याय उपसंहार से पूर्व उपदेशक ग्रंथ का अंतिम अध्याय है, जिसमें जीवन के यथार्थ अर्थ को उपदेशक ने समझाने का भरसक प्रयास किया है। उपदेशक कहता है कि जीवन का यथार्थ आनंद और सुख अपने दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह करने और ईश नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन से आता है, बाकी सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मनुष्य समय रहते अपने आप को सुधार ले, वह अपने जीवन के अच्छे दिनों का सदुपयोग करे। वह सावधान करता है, युवा शरीर में जब तक ताकत है तब तक वह उसे भले कर्मों में लगाए, क्योंकि जब बुढ़ापा दस्तक देगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। बूढ़ेपन में शरीर कांपने लगेगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, पैरों में चलने की और हाथों में काम करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। श्रोताओ, उपदेशक सुलेमान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि युवा व्यक्ति प्रायः अनंत जीवन और अनंत और अनादि ईश्वर की सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि जवानी में युवाओं को यह समझाना प्रायः मुश्किल हो जाता है कि जिंदगी हमेशा रहने की बस एक छोटी सी शुरुआत है। बाइबल आचार्य क्लार्क कहते हैं, जवानी में सारी ताकतें ज्यादा क्रियाशील और जोशीली होती हैं और युवा जीवन का बेहतर मजा ले पाते हैं। विश्वास, उम्मीद और प्यार अपने सबसे अच्छे रूप में, सबसे अधिक जोश में और सबसे कम मुश्किल हालातों में होते हैं। तथापि जीवन की सच्चाई पर यदि युवा ध्यान दें तो यौवन भी टिका नहीं रहता, वह भी आता और चला जाता है। इसलिए उपदेशक का परामर्श है कि यौवन के चले जाने से पहले व्यक्ति विश्वास को सुदृढ़ करे, आशावान रहे, प्रार्थना करे, प्रेम से रहे, अपने बड़ों का आदर और सम्मान करे, तभी उसके लिए वृद्धावस्था और दुर्बलता के दिन आसान बन जाएंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कैथोलिक कलीसिया अक्टूबर माह को रोजरी माला विनती के लिए समर्पित करती है। संत पापा लियो 14वें ने विश्वासों को इसकी याद दिलाते हुए रोजरी माला विनती और अधिक भक्ति से करने का प्रोत्साहन दिया। विशेषकर उन्होंने माता मरियम से शांति के लिए एवं युद्ध समाप्त होने के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। पोप ने बुधवार को आम दर्शन समारोह के अंत में कहा, अक्टूबर का महीना पौत्र रोजरी विनती करने का अवसर हो, इससे विशेषकर युद्धों के अंत एवं शांति की प्राप्ति के लिए समर्पित करें। वैटिकन में अक्टूबर माह की शुरुआत खास तरीके से की जा रही है। आज शाम 6 बजे वैटिकन के लोदग्रोटो में रोम के स्कूलों एवं पल्लियों से करीब 700 से 1000 बच्चे वैटिकन उद्यान में पोप लियो 14वें के साथ प्रार्थना करेंगे, जिसके द्वारा ए टू द चर्च इन नेट के तत्वाधान में 10 लाख बच्चे रोजरी माला विनती करते हुए पहल की शुरुआत की जाएगी। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को मध्य अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री फाउस्टीन आर्कएंजेल तावादेरा से मुलाकात की, जिन्होंने बाद में क्रमशः वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन और वैटिकन विदेश सचिव महाधा मदस पॉल रिचर्ड कलाघर से भी मुलाकातें की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वैटिकन सचिवालय में सौहार्दपूर्ण बातचीत के दौरान वैटिकन और मध्य अफ्रीका गणराज्य के बीच अच्छे रिश्तों पर खुशी जाहिर की गई। मुलाकात में मध्य अफ्रीकी समाज में कलीसिया के योगदान की भी सराहना की गई। वक्तव्य में यह भी बताया गया कि दोनों पक्षों ने देश की सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय स्थिति से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर बात की, खासकर शांति प्रक्रिया के बारे में और मौजूदा क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। लुथेरन विश्व संघ के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते हुए पोप लियो 14वें ने ख्रिस्तों को मसीह की गवाही देने और दुनिया भर में कृपा की यात्रा जारी रखने का प्रोत्साहन दिया। पोप लियो 14वें ने गुरुवार को लुथेरन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। अपने भाषण में पोप ने इस बात की तारीफ की कि पिछले कुछ दशकों में लुथेरन कैथोलिक रिश्ते आध्यात्मिक एवं धार्मिक रूप से बेहतर हुए हैं। उन्होंने लुथेरन एवं कैथोलिक कलीसियाओं के बीच चल रही अंतर्राष्ट्रीय बातचीत की ओर इशारा किया, जो अपने 6ठे चरण में पहुंच गई है। इसके बाद पोप लियो ने 2021 में स्वर्गीय पोप फ्रांसिस के ख्रिस्त एकता निमंत्रण को याद किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह यादों को शुद्ध करता और कड़े रवैये को दूर करता है। उन्होंने कहा, ख्रिस्त एकता कलीसियाई कूटनीति का अभ्यास नहीं है, बल्कि कृपा की यात्रा है। यह मानवीय बातचीत एवं समझौते पर नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। पोप लियो ने कैथोलिक और लुथेरन को उस यात्रा पर चलते रहने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा, प्रेरितों के विश्वास, संस्कारों और सेवाओं में नवीकृत रूप से जुड़ना हमारी कृपा की एक साथ चलने वाली यात्रा का लक्ष्य है, जिस पर हम सुसमाचार के मार्गदर्शन में साथ चलते हैं। पोप ने कहा कि 2023 में अगस्त पर कन्फेशन यानी लुथरन सुधार दस्तावेज की 500वीं सालगिरह होगी और कहा कि जो बांटने वाला पल बन गया था, उसे अब एक गहरे एक साथ चलने वाला अनुभव का अवसर होना चाहिए, जो ख्रिस्तों को पूर्ण ठोस एकता के करीब ले जाए। उन्होंने ऑगस्टबर्ग कॉन्फेशन के बारे में पोप जॉन पॉल द्वितीय के शब्दों को याद करते हुए कहा कि लेखकों का इरादा एक पौत्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया में उसके विश्वास की गवाही देना था। कलीसिया के अंदर मेल मिलाप के एक दस्तावेज के रूप में कन्फेसियो अगुस्ताना को बाद में बांटने वाले कन्फेशनलाइजेशन का दस्तावेज समझा जाने लगा। पोप लियो ने सभी ख्रिस्तों, खासकर ईश शास्त्रों को अपना मन और दिल मसीह पर लगाने के लिए प्रेरित किया, जब कलीसिया 2030 की जयंती की ओर देख रही है। उन्होंने कहा, आइए हम गहरी श्रद्धा के साथ अपनी आम जड़ों की ओर, आरंभिक कलीसिया और कलीसिया के धर्माचारों के विश्वास की ओर लौटें, ताकि हम उस प्रेरितिक एवं प्री कॉन्फेशनल विरासत को फिर खोज सकें, जो सच में हमें ख्रिस्त में भाई बहनों के रूप में जोड़ती है। अंत में पोप लियो 14वें ने कहा कि ख्रिस्त को हमारी दुनिया में एक विदेशी शब्द नहीं बनना चाहिए और लुथेरन एवं कैथोलिकों को सुसमाचार का प्रचार करने के हमारे आम मिशनरी कार्य में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, हमारी दुनिया को ख्रिस्त के ख्रिस्त एकता के साक्ष्यों की जरूरत है। अक्टूबर माह की प्रार्थना की प्रेरिताए में पोप लियो 14वें ने विश्वासों का आह्वान किया है कि वे मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है और कलंक एवं एकाकीपन से जूझ रहा है। यही कारण है कि पोप लियो 14 ने अक्टूबर की अपनी प्रार्थना की प्रेरिताई में मानसिक रूप से पीड़ित लोगों की सेवा की प्रेरिताई को समर्पित किया है। पोप अपनी प्रार्थना की प्रेरिताई नेटवर्क के द्वारा विश्वासियों और सदिच्छा रखने वाले लोगों को प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित करते हैं, ताकि कलीसिया एक खुला घर बन सके जो उन लोगों को बिना न्याय किए और बिना नजरअंदाज किए साथ दे सके जिन्हें अपनी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें हैं। संत डिम्फना का काटलिए जो मानसिक रोगियों, चिंता, अवसाद से जूझ रहे लोगों और मानसिक स्वास्थ्य कार्य से जुड़े लोगों की भी संरक्षिका हैं। संत पापा इस माह के वीडियो में अपनी प्रार्थना जीवन के ईश्वर को संबोधित करके शुरू करते हैं, जो मानव के दिल की गहराइयों और उन खामोश घावों को जानते हैं जिन्हें अक्सर कोई नहीं देख पाता। पोप ईश्वर के सामने हमारे उन भाइयों और बहनों को पेश करते हैं जो चिंता, अवसाद या दूसरी मानसिक बीमारियों से अकेले जूझ रहे हैं। यह याद दिलाते हुए कि ईश्वर उन्हें प्यार से नाम लेकर बुलाते

स्वास्थ्य की देखभाल को कलीसिया के जीवन और मिशन में शामिल करना सीख सकें, इस तरह ईश्वर की दया का जीता जागता संकेत बन सके। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

ज्योति मधुर लगती है और आंखें सूर्य का प्रकाश देखकर प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य वर्षों तक जीता रहता है तो उन सब का आनंद मनाए, किंतु उसे याद रहे कि बुरे दिनों का अभाव नहीं और बाद में जो आएगा वह सब व्यर्थ है। युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट को दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय के अंतिम पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। उपदेशक सुलेमान इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि सूर्य का प्रकाश हम प्रतिदिन देखते हैं, किंतु उसके महत्व के प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता। जीवन एक वरदान है, उसी तरह सूर्य का प्रकाश भी ईश प्रदत्त अनमोल वरदान है। सूर्य की ज्योति मधुर होती है, वह हमारे जीवन को रोशन करती है। सूर्य की रोशनी से चित्त प्रसन्न होता और अंधकार समाप्त हो जाता है। उपदेशक का परामर्श है कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र लंबी है, यदि वह दीर्घ काल तक जीता है, तो वह अपने जीवन के सभी वर्षों का आनंद उठाए, किंतु यह कदापि न भूले कि अच्छे दिनों के बाद बुरे दिनों का भी अभाव नहीं होगा। वस्तुतः उपदेशक का कहना है कि जीवन एक अनमोल वरदान है जिसका आनंद लिया जाना चाहिए, साथ ही भविष्य में आने वाली कठिनाइयों और समय के क्षण भंगुरता की सच्चाई को भी याद रखा जाना चाहिए। श्रोताओं, उक्त पद जीवन की सरलता और उसके प्रतिदिन के वरदान होने का समारोह है। ये लोगों को कठिन घड़ियों में, यानी कि बीमारी आने से पहले और वृद्धावस्था के आने से पहले, जीवन के समय की कद्र करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। सूर्य और उसका प्रकाश जीवन का प्रतीक और मनुष्य को दिया गया अनमोल वरदान है। मनुष्य को हर दिन के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। फिर उक्त पद हमसे अपने समय की कीमत समझने और रोजमर्रा के पलों में खुशी ढूंढने का आग्रह करते हैं, साथ ही इसमें सच्चाई के साथ संतुलन रखने का अनुरोध किया गया है। उपदेशक का परामर्श है कि अपने अच्छे दिनों में कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे बुरे दिनों में भी तुम्हारा धैर्य न टूटे और साहसपूर्वक तुम सारी कठिनाइयों का सामना कर सको। तदुपरांत उपदेशक युवाओं को सावधान करता है कि वे अपनी जवानी का मजा अवश्य लें, स्वतंत्रता से जिएं, किंतु इस बात को कदापि न भूलें कि उन्हें अपने किए प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा। यह कदापि न भूलें कि ईश्वर उन्हें उनके निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। प्रिय युवाओं, जवानी और जोश जल्दी ही बीत जाता है, इसलिए यौवन के वर्षों को हम कड़वाहट, नाराजगी और बेमतलब के बोझ पर बर्बाद न करें, बल्कि इन अच्छे वर्षों का सदुपयोग करें। इन वर्षों में आज़ादी और आनंद के बीच कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को न भुलाएं, नियमों का अनुपालन करें, व्यवस्था कायम करने में योगदान दें तथा अपने और अपने आस पड़ोस के लोगों का जीवन सुखमय बनाएं।

और उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय के अंतिम पद में उपदेशक कहता है, अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट को दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। श्रोताओ, अनंत ज्योति और अनंत ईश्वर की ज्योति में जीने से हमारे जीवन में न सिर्फ भावी जीवन के लिए अपितु वर्तमान जीवन में भी आशा का संचार होता है, जो हमारे हृदय से शोक, दुख और संताप को दूर कर देती है। कुरिन्थियों को प्रेषित पहले पत्र के 15वें अध्याय के 58वें पद में संत पॉल लिखते हैं, प्यारे भाइयों, आप सुदृढ़ और अटल बने रहें और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। श्रोताओ, अनंत जीवन और अनंत और अनादि ईश्वर का स्मरण किए बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है, बेमतलब है, और प्रेरितवर संत पॉल इस बात को भलीभांति समझ चुके थे। इसीलिए तो कुरिन्थियों को प्रेषित पहले पत्र के 15वें अध्याय के 19वें पद में वे लिखते हैं, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। आगे उपदेशक ग्रंथ के 12वें अध्याय में भी सुलेमान इसी विचार को जारी रखते हुए युवकों का आह्वान करता है कि जवानी में वे अवश्य आनंद मनाएं, किंतु सृष्टिकर्ता ईश्वर को न भूलें। 12वें अध्याय के प्रथम 3 पदों में वह कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे, मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला, उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे, उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे, और जो खिड़कियों से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। श्रोताओ, 12वां अध्याय उपसंहार से पूर्व उपदेशक ग्रंथ का अंतिम अध्याय है, जिसमें जीवन के यथार्थ अर्थ को उपदेशक ने समझाने का भरसक प्रयास किया है। उपदेशक कहता है कि जीवन का यथार्थ आनंद और सुख अपने दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह करने और ईश नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन से आता है, बाकी सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मनुष्य समय रहते अपने आप को सुधार ले, वह अपने जीवन के अच्छे दिनों का सदुपयोग करे। वह सावधान करता है, युवा शरीर में जब तक ताकत है तब तक वह उसे भले कर्मों में लगाए, क्योंकि जब बुढ़ापा दस्तक देगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। बूढ़ेपन में शरीर कांपने लगेगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, पैरों में चलने की और हाथों में काम करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। श्रोताओ, उपदेशक सुलेमान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि युवा व्यक्ति प्रायः अनंत जीवन और अनंत और अनादि ईश्वर की सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि जवानी में युवाओं को यह समझाना प्रायः मुश्किल हो जाता है कि जिंदगी हमेशा रहने की बस एक छोटी सी शुरुआत है। बाइबल आचार्य क्लार्क कहते हैं, जवानी में सारी ताकतें ज्यादा क्रियाशील और जोशीली होती हैं और युवा जीवन का बेहतर मजा ले पाते हैं। विश्वास, उम्मीद और प्यार अपने सबसे अच्छे रूप में, सबसे अधिक जोश में और सबसे कम मुश्किल हालातों में होते हैं। तथापि जीवन की सच्चाई पर यदि युवा ध्यान दें तो यौवन भी टिका नहीं रहता, वह भी आता और चला जाता है। इसलिए उपदेशक का परामर्श है कि यौवन के चले जाने से पहले व्यक्ति विश्वास को सुदृढ़ करे, आशावान रहे, प्रार्थना करे, प्रेम से रहे, अपने बड़ों का आदर और सम्मान करे, तभी उसके लिए वृद्धावस्था और दुर्बलता के दिन आसान बन जाएंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कैथोलिक कलीसिया अक्टूबर माह को रोजरी माला विनती के लिए समर्पित करती है। संत पापा लियो चौदहवें ने विश्वासों को इसकी याद दिलाते हुए रोजरी माला विनती और अधिक भक्ति से करने का प्रोत्साहन दिया। विशेषकर उन्होंने माता मरियम से शांति के लिए एवं युद्ध समाप्त होने के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। पोप ने बुधवार को आम दर्शन समारोह के अंत में कहा, अक्टूबर का महीना पौत्र रोजरी विनती करने का अवसर हो, इससे विशेषकर युद्धों के अंत एवं शांति की प्राप्ति के लिए समर्पित करें। वैटिकन में अक्टूबर माह की शुरुआत खास तरीके से की जा रही है। आज शाम 6 बजे वैटिकन के लोद ग्रोटो में रोम के स्कूलों एवं पल्लियों से करीब 700 से 1000 बच्चे वैटिकन उद्यान में पोप लियो चौदहवें के साथ प्रार्थना करेंगे, जिसके द्वारा ए टू द चर्च इन नेट के तत्वाधान में 10 लाख बच्चे रोजरी माला विनती करते हुए पहल की शुरुआत की जाएगी। पोप लियो चौदहवें ने बृहस्पतिवार को मध्य अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री फाउस्टीन आर्केंजेल तावादेरा से मुलाकात की, जिन्होंने बाद में क्रमशः वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन और वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदश पॉल रिचर्ड कलाघर से भी मुलाकातें की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वैटिकन सचिवालय में सौहार्दपूर्ण बातचीत के दौरान वैटिकन और मध्य अफ्रीका गणराज्य के बीच अच्छे रिश्तों पर खुशी जाहिर की गई। मुलाकात में मध्य अफ्रीकी समाज में कलीसिया के योगदान की भी सराहना की गई। वक्तव्य में यह भी बताया गया कि दोनों पक्षों ने देश की सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय स्थिति से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर बात की, खासकर शांति प्रक्रिया के बारे में और मौजूदा क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। लुथेरन विश्व संघ के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते हुए पोप लियो चौदहवें ने ख्रिस्तों को मसीह की गवाही देने और दुनिया भर में कृपा की यात्रा जारी रखने का प्रोत्साहन दिया। पोप लियो चौदहवें ने गुरुवार को लुथेरन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। अपने भाषण में पोप ने इस बात की तारीफ की कि पिछले कुछ दशकों में लुथेरन कैथोलिक रिश्ते आध्यात्मिक एवं धार्मिक रूप से बेहतर हुए हैं। उन्होंने लुथेरन एवं कैथोलिक कलीसियाओं के बीच चल रही अंतर्राष्ट्रीय बातचीत की ओर इशारा किया, जो अपने छठे चरण में पहुंच गई है। इसके बाद पोप लियो ने 2021 में स्वर्गीय पोप फ्रांसिस के ख्रिस्त एकता निमंत्रण को याद किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह यादों को शुद्ध करता और कड़े रवैये को दूर करता है। उन्होंने कहा, ख्रिस्त एकता कलीसियाई कूटनीति का अभ्यास नहीं है, बल्कि कृपा की यात्रा है। यह मानवीय बातचीत एवं समझौते पर नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। पोप लियो ने कैथोलिक और लुथेरन को उस यात्रा पर चलते रहने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा, प्रेरितों के विश्वास, संस्कारों और सेवाओं में नवीकृत रूप से जुड़ना हमारी कृपा की एक साथ चलने वाली यात्रा का लक्ष्य है, जिस पर हम सुसमाचार के मार्गदर्शन में साथ चलते हैं। पोप ने कहा कि 2023 में अगस्त पर कन्फेशन यानी लुथरन सुधार दस्तावेज की 500वीं सालगिरह होगी और कहा कि जो बांटने वाला पल बन गया था, उसे अब एक गहरे एक साथ चलने वाला अनुभव का अवसर होना चाहिए, जो ख्रिस्तों को पूर्ण ठोस एकता के करीब ले जाए। उन्होंने ऑगस्टबर्ग कॉन्फेशन के बारे में पोप जॉन पॉल द्वितीय के शब्दों को याद करते हुए कहा कि लेखकों का इरादा एक पौत्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया में उसके विश्वास की गवाही देना था। कलीसिया के अंदर मेल मिलाप के एक दस्तावेज के रूप में कन्फेसियो अगुस्ताना को बाद में बांटने वाले कन्फेशनलाइजेशन का दस्तावेज समझा जाने लगा। पोप लियो ने सभी ख्रिस्तों, खासकर ईश शास्त्रों को अपना मन और दिल मसीह पर लगाने के लिए प्रेरित किया, जब कलीसिया 2030 की जयंती की ओर देख रही है। उन्होंने कहा, आइए हम गहरी श्रद्धा के साथ अपनी आम जड़ों की ओर, आरंभिक कलीसिया और कलीसिया के धर्माचारों के विश्वास की ओर लौटें, ताकि हम उस प्रेरितिक एवं प्री कॉन्फेशनल विरासत को फिर खोज सकें, जो सच में हमें ख्रिस्त में भाई बहनों के रूप में जोड़ती है। अंत में पोप लियो चौदहवें ने कहा कि ख्रिस्त को हमारी दुनिया में एक विदेशी शब्द नहीं बनना चाहिए और लुथेरन एवं कैथोलिकों को सुसमाचार का प्रचार करने के हमारे आम मिशनरी कार्य में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, हमारी दुनिया को ख्रिस्त के ख्रिस्त एकता के साक्ष्यों की जरूरत है। अक्टूबर माह की प्रार्थना की प्रेरिताएं में पोप लियो चौदहवें ने विश्वासों का आह्वान किया है कि वे मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है और कलंक एवं एकाकीपन से जूझ रहा है। यही कारण है कि पोप लियो 14वें ने अक्टूबर की अपनी प्रार्थना की प्रेरिताय में मानसिक रूप से पीड़ित लोगों की सेवा की प्रेरिताय को समर्पित किया है। पोप अपनी प्रार्थना की प्रेरिताय नेटवर्क के द्वारा विश्वासियों और सदिच्छा रखने वाले लोगों को प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित करते हैं, ताकि कलीसिया एक खुला घर बन सके जो उन लोगों को बिना न्याय किए और बिना नजरअंदाज किए साथ दे सके जिन्हें अपनी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें हैं। संत डिम्फना का कार्टलिए जो मानसिक रोगियों, चिंता, अवसाद से जूझ रहे लोगों और मानसिक स्वास्थ्य कार्य से जुड़े लोगों की भी संरक्षिका हैं। संत पापा इस माह के वीडियो में अपनी प्रार्थना जीवन के ईश्वर को संबोधित करके शुरू करते हैं, जो मानव के दिल की गहराइयों और उन खामोश घावों को जानते हैं जिन्हें अक्सर कोई नहीं देख पाता। पोप ईश्वर के सामने हमारे उन भाइयों और बहनों को पेश करते हैं जो चिंता, अवसाद या दूसरी मानसिक बीमारियों से अकेले जूझ रहे हैं। यह याद दिलाते हुए कि ईश्वर उन्हें प्यार से नाम लेकर बुलाते हैं, वे उन अवसरों के लिए माफी मांगते हैं जब समुदाय ने दूसरी तरफ देखा जिससे कलंक और भेदभाव को बढ़ावा मिला, और प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया एक खुला घर बने, एक सुरक्षित जगह जो बिना न्याय किए सुनती है और बिना डरे निकट आती है। यह प्रार्थना उन लोगों के लिए भी है जो उनकी देखभाल करते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, परिवार के सदस्य और स्वयं सेवक। वे उनके लिए शक्ति और दया की याचना करते हुए एवं पौत्रात्मा का आह्वान करके अपनी प्रार्थना समाप्त करते हैं, ताकि ख्रिस्त समुदाय मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को कलीसिया के जीवन और मिशन में शामिल करना सीख सके, इस तरह ईश्वर की दया का जीता जागता संकेत बन सके। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।